0: स्वागत करने के लिए तैयार है। समस्त द्वारों पे जो तोरण द्वार बने हैं वो मुस्कुराकर स्वागत करते हैं। मथुरा के समस्त चौराहों पर रेशमी वस्त्रों, गुब्बारों, विद्युत लड़ियों और खिलौनों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। प्रवेश करते ही श्रद्धालु अपलक निहारते रहते हैं अपने कान्हा की इस धरती पर जहां पर उन्होंने लीलाएं की थी। मथुरा के प्रवेश द्वारों पर की गई सजावट सभी का स्वागत कर रही है। स्वागत तो यहां पर भागवत भवन में श्रद्धालुओं का भी हो रहा है। श्रद्धालु आ रहे हैं तालियां बजाते हुए, श्री हरि बोल के नारों से गुंजायमान कर रखा है और तालियां बजा के आते हैं। बस एक ही अभिलाषा होती है कि अपने प्रभु की छवि को किस तरह निहार लें, उस मनोरम छवि को सदैव के लिए मानस पटल पर अंकित करना चाहते हैं। ठिटकते हैं, लेकिन जो सेवायत हैं, जो हमारे यहाँ व्यवस्था में लगे लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उनकी श्रद्धा आहत न हो धीरे से कंधे पर थपकी देकर उन्हें आगे बढ़ने का एक इशारा कर देते हैं। बाहर आज बारिश भी कुछ देर पहले बहुत तेज हुई थी, ऐसा लगता था कि द्वापर का वो दृश्य जीवंत हो गया जब परमात्मा ने यहाँ पर जन्म लिया था। श्रद्धालुओं का अगर मथुरा में प्रवेश होता है तो जगह जगह उन्हें कृष्ण की लीलाएं दिखती हैं, कटआउट लगे हैं, झांकियां सजी हैं, ध्वनि और संगीत के प्रभाव से वो उन्हें आकर्षित ही नहीं कर रही हैं, मोह रही हैं। माखन चोरी है, रासलीला, नाग नथैया, कृष्ण जन्म, गौचारण जैसे तमाम प्रसंग है जो कि वहां पर अंकित हैं। और ये सब कुछ दिव्य है। 11 बजे से यहाँ पर पूजन, जो विशेष पूजन है वो चल चुका है। 1008 सहस्त्रार्चन से करते हैं, पुष्प कमलों को चढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले श्री गणेश जी का पूजन हुआ, उसके बाद नवग्रह का पूजन हुआ और सहस्त्रार्चन चल रहा है। और यहाँ पर श्रद्धालुओं, सहस्त्रार्चन के साथ साथ श्रद्धालुओं का प्रवाह भी अनवरत हमारे बाईं तरफ से निकलता है और दाहिनी तरफ से चला जा रहा है। ये जो दिव्य शोभा है, ये जो अद्भुत वातावरण है, इसे शब्दों में व्यक्त करना नितांत असंभव, लेकिन फिर भी मैं श्रीयुक्त श्री कृष्ण जी को ये माइक्रोफोन देता हूँ आगे का विवरण देने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद देशदेव दीपक जी। एक बार पुनः श्री कृष्ण स्थान से स्वीकार कीजिए श्री कृष्ण का सादर प्रणाम और आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज इस समय यहाँ भागवत भवन में जहाँ ठाकुर जी अपनी आलादनी शक्ति श्री राधा हरि के साथ भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और इसमें भक्तों का आने का सिलसिला एकदम अचानक से बढ़ गया है। बड़े भक्ति भाव से, श्रद्धा से, उल्लास से, उमंग के साथ राधे राधे का जय घोष करते हुए भागवत भवन की ओर बढ़ते चले आ रहे और यहाँ पर उनकी वेशभूषा से प्रतीत होता है कि देश के सुदूर प्रांतों से अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर दर्शन करने आए हैं और वर्ष पर्यंत उनके मन में बस एक ही भावना रहती है कि कब वो अद्भुत पल आए जब वो भगवान के प्राकट्य उत्सव का अपने लाला के आगमन की प्रतीक्षा के लिए उनके यहाँ पर भागवत भवन में अपने प्रभु के दर्शन करने आए। जब अजन्मे का जन्म होता है, पालनहार प्रकट होते हैं, उस समय भागवत भवन में रहना अपने आप किसी पुण्यों के संचित लाभ से प्राप्त करने से कभी भी कम नहीं होता है। और इस समय जो भक्त आ रहे हैं, जैसे ही भगवान के सामने आते हाथ उठाकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय श्री राधे का जय घोष करते हैं और यहाँ पर भगवान जैसा नाम है कृष्ण सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक बार जो उनकी ओर देख लेता है बस उनका होकर रह जाता है, पांव ठिठक जाते हैं, आगे बढ़ने का मन ही नहीं होता। लेकिन जो सेवायत है, सुरक्षा प्रहरी है, बड़े ही अनुनय विनय के साथ, विनम्रता के साथ उनसे आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं और जो पीछे से आने वाले भक्तों का प्रवाह है उन्हें अपने स्थान पर रुकने भी नहीं देता है। और न केवल भागवत भवन, अगर मैं बात करूं श्री का जन्म स्थान में, यहाँ पर मुख्यतः तीन मंदिर और भी हैं, जैसे कि यहाँ पर ठाकुर केशव जी का मंदिर है भागवत भवन के अलावा, और वो गर्भगृह क्रूर कंस के कारागार का वह भाग जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था और उस कारागार को आज इतना सुंदर ढंग से सजाया गया है, बिल्कुल कारागार का दृश्य प्रस्तुत हो रहा है। और कारागार के प्रवेश द्वार के पास योग माया मंदिर है जहाँ पर आज योग माया ने एक विशेष स्वर्ण और रत्न जड़ित मुकुट धारण किया हुआ है और उस कारागार में जहाँ पर भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे, धन्य कंस का कारागार, हरने लिया जहाँ अवतार ये बंदी वसुदेव देव की स्तुत करते उन देव देव की। और यहाँ पर आज भागवत भवन में इस समय भजन गाया जा रहा है, तमाम श्रद्धालु तालियां बजा बजा कर मंजीरे की धुन में, शंख के साथ में, झान मंजीरे के साथ में भजन गा रहे हैं। और यहाँ आज बड़े सवेरे मंगल आरती हुई शहनाई नगाड़ों के साथ और उसके बाद सुबह 8 बजे से पंचामृत अभिषेक किया गया ठाकुर जी का और पवित्र श्लोकों का पाठ किया गया और करीब 8 बजे के आसपास पुष्पार्चन हुआ।

0: इस बार पुष्पार्चन में गौ रक्षा के साथ देश रक्षा का संकल्प दिया गया। इसके बाद मंगलार्चन वेद मंत्रों के मध्य युगल सरकार के शिचड़ों में पुष्पांजलि यहाँ पर की गई है। उसके आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर गणेश पूजन और नवग्रह पूजन के साथ यह पूरा जन्मोत्सव कार्यक्रम विधिवत आरंभ हुआ है। और भागवत वन के ठीक सामने जो यहाँ पर एक लीला मंच बना हुआ, आज वहाँ पर प्रयोजन लीला आयोजित की जा रही है कि भगवान ने किस कारण से यहाँ पर अवतार लिया था, उसका यहाँ पर आनंद लेने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर एकत्रित है। और जो सामान्य दिनों में यहाँ पर जो प्रवेश द्वार होता है जहाँ पर भगवान कृष्ण सारथी की भूमिका में अर्जुन को गीता को उपदेश दे रहे हैं, आज वहाँ से निकासी है। और जो सामान्यता जो दूसरा दरवाजा होता है प्रवेश द्वार, वहाँ से प्रवेश ले रहे हैं। और साथ साथ इस पूरे मथुरा नगरी को बहुत ही आकर्षक ढंग से रंग बिरंगी विद्युत झालों से, रंग बिरंगी पताकाओं से और भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, कहीं माखन चोरी की लीला है, कहीं गाल ग्वाल बालों के साथ माखन चोरी कर रहे हैं, उनसे जगह जगह सजाया गया है और अनेक सांस्कृतिक मंच बनाए गए। उन सांस्कृतिक मंचों में यहाँ के जो लोक कलाकार हैं, देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। और जैसे द्वापर में जब भागवत मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जो स्थितियां बनी थी, आज वही स्थिति यहाँ बन रही है। आज बारिश भी हुई है, यहाँ पर बिजली भी चमकी है, काली अंधेरी रात भी है, लेकिन उस समय गहन अंधकार था, आज मथुरा नगरी का कण कण प्रकाशवान है। ऐसा प्रदृश्य शायद अद्भुत प्रदृश्य यहाँ पर उपस्थित हो रहा है और पूरी मथुरा नगरी पे एक बड़े मेले जैसा आयोजन है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं और जो कान्हा की नगरी है तो कोई भी श्रद्धालु भूखा कैसे रखता है। जगह जगह पर यहाँ पर भंडारे लगाए गए हैं जहाँ पर विभिन्न तरह के पकवान बड़े अनन्य विनय के साथ आने वाले श्रद्धालुओं को परोसे जा रहे हैं। उनसे विनती की जा रही है, हे लाला साथ को ले लो। और जैसे ही यहाँ पर लोग भागवत भवन की ओर प्रवेश करते हैं, वे मंदिरों की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि हर मंदिर हर मठ हर घर में आज कान्हा की विशेष झांकी सजाई गई है। आज कान्हा का जन्म होगा और उस जन्म में पूरा ब्रजमंडल ही नहीं, जहाँ जहाँ भी यहाँ पर भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वे सभी अपने लाला के प्राकट्योत्सव पर बड़े आनंद से बड़े उत्साह के साथ लाला का जन्मदिन मना रहे हैं। और इस समय श्री द्वारकाधीश मंदिर में क्या दृश्य उपस्थित हो रहा है, आइए और दृश्यों के लिए चलते हैं डॉक्टर मीनू खरे के पास।
1: धन्यवाद श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः योगेश्वर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बधाइयां। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ये रात्रि मोह रात्रि कही जाती है। कान्हा के रूप ने मोह लिया इस ब्रह्मांड, ऐसे और देखिए राजाधिराज की जय बोली जा रही है, क्योंकि द्वारिकाधीश का ये मंदिर, इसका नाम श्री द्वारिकाधीश मंदिर यूं पड़ा क्योंकि श्री कृष्ण द्वारिका के स्वामी हैं। और धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में इस मंदिर के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थल था, जिसे हरिग्रह कहा जाता था। और आज इसी हरिग्रह में हरि के चरणों में बैठकर आंखों देखा हाल जन्मोत्सव का आप तक पहुंचाने का ये सौभाग्य आकाशवाणी की तरंगों का और उसकी पूरी टीम का। ब्रज की रज जाको मिल गई बाकी चाह न शेष, चाहत में रहे ब्रह्मा विष्णु महेश। यहाँ पर राधे राधे कृष्णा कृष्णा की गुंजार होते हुए ध्वनि एक मंत्र जैसा सभी भक्ति भावना में लीन। चारों ओर भक्तजन अब उत्सुकता बढ़ती हुई। श्री यमुना जी के तट पर बसे द्वारिकाधीश मंदिर का सौंदर्य आज अनुपम छटा बिखेर रहा है। असंख्य रंग बिरंगे पुष्पों तोरणों रंग बिरंगी झालरों कुमकुमों बंधन वारों से सजे स्तंभ द्वार और झरोके मानो पुष्प बगिया के स्वर्गिक द्वार हो। इस क्षण का सौंदर्य शब्दों से परे है, मानो शब्द भी प्रभु के आगे नतमस्तक हो गए हो। तीतर पाखी बादलों की झूमते हुई छटा और बयार की इटलाती लहरियां और आज झूमती हुई लहराती हुई बादलों की ये घटाएं और बारिश अनायास ही याद दिला देता है वो लोकगीत। और देखिए एक बार पुनः राजाधिराज की जय। भादो मास रैन अंधियारी जन्मे कृष्ण मुरारी ना। आज

0: प्रकृति स्वयं बाहें फैलाकर मानो कन्हैया के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हो। वातावरण में आध्यात्मिकता है, दिव्यता है, उस अलौकिक पल की आहट आज हर बीतते पल में मानो उत्तेजना, उत्सुकता और अधीरता उत्पन्न करती प्रतीत होती है। अजन्मा आज जन्म लेगा, अनंत अपरिमेय आज समा जाएगा माँ की गोद में। जग के अश्रु पोंछने वाले का शिशु क्रंदन सुनकर आज हर श्रद्धालु की आंखों में होंगे अपरिमित आनंद के अश्रु। जग का पालनहार आज स्वयं पालने में होगा। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे मल्हावे, जोई जोई कछु गावे। मध्य रात्रि का घना अंधकार है लेकिन गोकुल में उजियारा फूटने ही वाला है। श्री यमुना महारानी भी अपनी लहरों में नेह के मोती बरसाती प्रतीत होती हैं। चारों ओर उल्लास, आनंद और भक्ति का अद्भुत समागम आज यहाँ चारों ओर व्याप्त दिखता है। यमुना महारानी अपने अद्भुत श्रृंगार में सजी हैं। उनकी लहरों पर चांदनी का रेशमी आभूषण मानो झिलमिला रहा है। लहरों की तरंगे वीणा की झंकार जैसी प्रतीत होती हैं। आज वे स्वयं को सजाकर खड़ी हैं, क्योंकि ब्रज का नन्हा नंदलाल स्वयं नटनागर उनकी गोद से पार होकर गोकुल जाने वाला है। यमुना महारानी आज केवल नदी नहीं है, उनकी व्यग्रता उफन कर शिशु कृष्ण के चरण छू लेने की है। देखो तो घनश्याम से एक नदी का नेह, देखो तो घनश्याम से एक नदी का नेह, चरणों को छू भर लिया कोई सांवरी देह। और अब अगली आवाज डॉक्टर नृत्य गोपाल की।
1: डॉक्टर मीनू खरे, आप इस समय देख रहे हैं कि मंदिर प्रांगण में भक्तों का सैलाब उमड़ता हुआ, हम जिधर देख रहे हैं चारों ओर श्रद्धालु अपार जन समूह इस समय श्रद्धावनत होकर के अजन्मे के जन्मोत्सव की पावन घड़ी का पल पल बाट जो रहा है और हम देख रहे प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे जैसे कन्हैया के प्राकट्य की घड़ी पास आती हुई, वैसे वैसे जय घोष से, गूंजों से मंदिर परिसर ऐसे गुंजायमान हो रहा है जैसे कि गगन भेदी ये स्वर यहाँ पर सबको आह्लादित उमंगित कर देता है। इस उल्लास के वर्णन करना हम इन शब्दों में जैसे जैसे आप तक पहुंचा पा रहे हैं। राजाधिराज द्वारकाधीश मंदिर का यह आंगन, द्वारकाधीश की जय, वसुदेव नंदन की जय, देव की नंदन की जय, नंद नंदन की जय, यशोदा नंदन के जयकारों के साथ गूंज रहा है। ब्रज में ब्रज चंद भयो, यशोदा फर चंद भयो, अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और इस कन्हैया लाल की जयकारे के साथ ये माखन चोर कृष्ण आज जब इस मथुरा भूमि पर यहाँ पर पधार रहा है तो यहाँ पर भक्तों का ही जो समूह है इनका नृत्य देखने लायक है। और बहुत सुंदर देखने लायक यह भी है कि देश विदेश से आए हुए जो श्रद्धालु हैं कैसे कैसे सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं। ये जो सामने से एक टोली जा रही है लग रहा है कहीं विदेश से आए हुए हैं, और इन्होंने कितने सुंदर मोर पंख धारण किए हुए हैं, बांसुरी लिए हुए, वो कभी बांसुरी को देखते हैं कभी मोर पंख को, और कैसे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। और क्या है, कृष्ण जन्मभूमि का मथुरा, क्रीड़ा स्थली गोकुल, लीला स्थली नंदगाम, बरसाना, दिव्य महाराज की पावन धरा, वृंदावन की छवि आज अलौकिक है। और जनमानस भावातिरेक में बार बार यही गाए जा रहा है, बड़ो भाग नंद रानी तेने पायो, तेरो पुत्र जगत को स्वामी, सो तेने गोद खिलायो। आस्था और संस्कृति के इस जीवंत आज के इस अवसर पर जहाँ पर सदियों पुरानी परंपराओं का जिस तरीके से निर्वाह और उसको लोक में उतारने का अद्भुत जो एक क्रम द्वारकाधीश मंदिर से, और यहाँ के सेवायत धन्य है, देख रहे हैं जैसे जैसे समय पास आ रहा है कुछ कुछ यहाँ पर हलचल होने लगी है। कुछ सेवायत इस समय थालों में भर करके बड़ी सुंदर सुंदर सामग्री ला रहे हैं। और आज हमने प्रातःकाल यहाँ के सेवायतों से बात की, एक विशेष भोग यहाँ पर आता है धनिये की पंजीरी के साथ सौंठ के लड्डू, ये यहाँ का, और सीरा जो कि ब्रिज का अपना ही प्रसाद है उस सीरा का भोग यहाँ पर लगाया जाएगा। और देख रहे हैं कि धीरे धीरे कितने सुंदर सजे हुए हमारे ये जो यहाँ के सेवायत हैं, यहाँ इनको मुखिया जी कहा जाता है, और बड़ा बड़ा सुंदर क्रम यहाँ पर सेवायतों का, लेकिन सुंदर सुंदर वस्त्रों में थाल लिए हुए यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि संभवतः इसमें दही दूध मक्खन घृत शर्करा ये सब अभिषेक के लिए आया लाया जा रहा है। और प्रातः काल भी यहाँ

0: पर अभिषेक हुआ श्री कृष्ण की, जन्मपत्री का वाचन हुआ, और अब इस समय जब कन्हैया के जन्म की घड़ी पास आ रही है, तो जैसे जैसे ये जैसे पर्दा हिलता है तो भीतर हम देख रहे हैं कि इस प्रांगण में हमारे श्रद्धालुओं में ऐसा उत्साह आ जाता है, उन्हें लगता है कि पर्दा खुलने वाला है, लेकिन वो देखते हैं कि वहां तो भीतर से कुछ ना कुछ सामग्री लाई जा रही है, और इस सामग्री में कौन कौन सी सामग्री होगी हम थोड़ी देर में बताएंगे। डॉक्टर मीनू खरे, आप देख रहे हैं कितनी हलचल होने लगी है श्रद्धालुओं में,
1: व्यग्रता उत्कंठा उल्लास मानो अब अपने चरम पर पहुंचता हुआ। आज इस समय श्री द्वारिकाधीश मंदिर में, जो कि जहां पर वल्लभ संप्रदाय के आचार्यों के संरक्षण में पूजा अर्चना की जाती है, पुष्ट मार्गी सेवा प्रणाली के अंतर्गत आज भाव भोग श्रृंगार की प्रधानता है। यहां पर बाल भाव की सेवा की जा रही है, भगवान का यहाँ पर ध्यान मुद्रा में है।